0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइट इन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवियर्ड मास्टर। A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है।

लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: कफ़न ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दस 723030।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज, ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 एफएम स्टेरियो पर और 100.6 एफएम पर आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर पे सुन सकते हैं। अगर आप डीएबी भी सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। और अगर आप एप्पल अप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, सन्ना रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे सुन सकते हैं आप, www.sunriseradio.fm पर आप जहाँ कहीं भी हैं हमें सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। अभी बहुत शुक्रिया आपका। और एक और बात, द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग will be exclusive to listeners club members, so join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ निभाएंगे। दो बजे तक मेरा और आपका साथ होगा, मिले जुले गीत होंगे, तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम।
1: Brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, और इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की प्यारी सी आवाज़ों में, और अब चलते हैं जनाब एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इन्जॉय करते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना। एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है। गुलाम भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मस्ती भरा गीत भी आप और आपके स्टाफ के नाम, नवीद भाई के नाम और प्यारी बहना साजिया जी, आजरा जी आपके नाम और साइमा जी आपके नाम, सभी सुनने वालों के नाम। इंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गीत को।

0: अभी आपने पूर्णिमा और उदित नारायण के बाजू में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब टाइम हो गया है कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन उससे पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:46, यानी कि 11:46। तो जनाब अब वक्त आता है एक सदाबहार पुराने गीत का, और वो गीत मस्ती भरा गीत होगा। थोड़े सोचा कि मस्ती भरे गीत प्ले कर दूं ताकि जो दोस्त काम कर रहे हैं वो भी मस्ती में आकर काम करें और रेडियो को एंजॉय करें। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी दोस्त। तारिक जुल्फी साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आपने कहा कि आप अपने दोस्त हीरा साहब के लिए और मलिक अशफाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं, मस्ती भरा गीत आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम। उसके बाद रिस्फीत से वाजिद भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। और उसके बाद जनाब कामरान भाई, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपने जो है वो ये दो मस्ती भरे गीत आपको अच्छे लगे तो जनाब आपके नाम किए। और आने वाला गीत भी मस्ती भरा है मोहम्मद रफ़ी मरहूम की आवाज़ में, और आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे अपने जनाब सफ़ीउल्लाह भाई, नवीद भाई और ग़ुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपके स्टाफ के नाम, और नसरीन साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद आपके लिए गीत लगाते हैं।
2: You're listening to Sunrise Radio.
3: पुराना सुना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
3: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
5: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिना रेस्टोरेंट। कम एंड डिस्कवर आवर एक्साइटिंग न्यू मेन्यू packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste and something new.
6: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा मस्ती भरा जंगली फिल्म से लिया हुआ गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया, और अब जनाब सोच में पड़ गए हैं कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए लगाएं, और अब चलिए यही गीत लगा देते हैं, पूरा नहीं सुन पाएंगे आप सभी दोस्तों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। तो आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज भी है, फैंसी ए बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज वंस बैक टू द स्टूडियो। Fancy a bit of fun? Visit Sunrise, play and help Raj race back to the studio in Sunrise Studio Roach. Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listeners Club to unlock even more. तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो सर आपके नाम किया ये गीत।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू की मत भरी आवाज में हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब इसके साथ ही जनाब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14, यानी के 12:14, और चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जो गीत होगा आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम होगा, और उसके बाद अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और आपकी जानिब से आप सभी सुनने वाले के नाम होगा। और उसके बाद हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब। आप भी अपने दोस्तों के लिए, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब के लिए और मलिक अशफाक साहब के लिए सुनना चाहते हैं। और इसी गीत को नसरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे प्यारी बहना सादिया जी, हाजरा जी आपके नाम भी, और इसी गीत को मूना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं। और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: You're listening to Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जो आने वाला गीत है वो भी प्यारा सा गीत है, और यहाँ काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, इकरा सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साहिमा के लिए। और इसी गीत को प्यारी बहना आजरा जी, सादिया जी आपके नाम भी करेंगे और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में कव्वाली नुमा की सुना, और हमें आबद भाई फैक्ट्री से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका। अभी मैं कव्वाली लगाऊंगा नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में, तो अब आबिद भाई शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम करेंगे, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे। नदीम मंसूर साहब, आपने भी फ़ोन किया, माज़ चाहता आपकी कॉल भी नहीं ले पाया हूँ, और जनाब शुक्रिया फ़ोन करने का और प्रोग्राम को सुनने का। उसके बाद लियाकत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, और आपके नाम भी ये कव्वाली करूँगा। चौधरी मुजफ्फर साहब और ईरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करूँगा, और इसी को अमरीन साहब आपके नाम भी करूँगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद कव्वाली, कव्वाली के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कव्वाली सुनी नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाजों में, और इसके साथ ही चलते हैं एक और प्यारा सा गीत। जनाब आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे, आबिद भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, नदीम मंसूर साहब, लियाकत भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम। और इसी गीत को जनाब प्यारी बहना सादिया जी और आजरा जी आपके नाम भी करेंगे।

0: साधना सरगम मालूम चाहते हैं साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46 यानी कि 12:46 और कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। और नदीम मंसूर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई बात कर रहे थे और आप गीतों की फरमाइश कर रहे थे, गज़ल की फरमाइश की, हमारे सिस्टम में नहीं थी तो मेरे जहन में एक आ गई। आप सुनना चाहते थे नदीम मंसूर भाई पंकज उदास की एक गज़ल, वो यहाँ थी नहीं तो मुझे याद आ गया कि एक बहुत प्यारी गज़ल है और नाम फिल्म में गाई गई है वो गीत गज़ल। और मैंने कहा कभी अरसा हो गया, सालू हो गए मैंने वो नहीं चलाई तो वो चला दूँ, तो बहुत खुश हुए, कहने लगे ठीक है भाई वही चला दो, बहुत अच्छी गज़ल है। तो चिट्ठी आई है तो जनाब ये डिसाइड किया कि वो चलाएंगे। तो चलते हैं सुनते हैं इस गज़ल को। हीरा खान साहब, नदीम मंसूर साहब के अलावा आबिद भाई, लियाकत भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल वाले, ग़ुलाम भाई स्पेशली और सफ़ीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन रेडियो को सुन रहे हैं और स्पेशली इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहज़ादे काम कर रहे हैं, स्पेशली उनके नाम बशारत अली सिकंदर अली के साथ साथ जितने दोस्त वहाँ बैठे हैं उनके नाम भी।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट स्वीट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश किए जाएं। और दोस्तों अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274 306666। आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। तो दोस्तों चलते हैं प्रेम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरात को सुन रहे हैं, तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत जो आप सभी सुनने वालों के नाम होगा। इस उम्मीद के साथ पेश करूंगा कि आप सभी इस गीत को पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सरफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और दोस्तों, अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। उसके रास्ते आइएगा और प्रोग्राम में शमूलियत कीजिएगा। तो अब जनाब चलते हैं एक और गीत की जानिब, और ये गीत आप सभी दोस्तों के नाम करूँगा जो इस वक्त जो है वो सन्ना रेडियो को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। और इरा खान साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। जनाब आप प्रोग्राम को बड़े गौर से सुन रहे हैं तो अच्छी बात है जनाब, और मज़े की बात यह है कि आप साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर सुनने वालों में से कोई अपनी पसंद का गीत सुनना चाहे तो भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर होगा 01274306666। और अगर हमारे सिस्टम में गीत हुआ तो आपकी पसंद का गीत बाखुशी हम जो है प्ले करेंगे, ताकि आप को खुश देखना चाहते हैं हम। इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि आप दोस्तों का दिल बहलाए रखें, आपका टाइम अच्छा गुजरे और वक्त आपका अच्छा गुजरे जनाब, ताकि आप मज़े से प्रोग्राम को सुन के अपने काम में मगन रहें। जैसे काफ़ी दोस्त इस वक्त फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो दिल बहलाते हैं गीतों से। तो कोशिश होती है अच्छे और प्यारे से गीत आप दोस्तों के लिए पेश किए जाएं। तो अगर आप भी जैसा कि मैंने कहा कोई गीत सुनना चाहें तो आप ज़रूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। तो जनाब अब चलेंगे, मज़ीद बातों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, गीत की जानबी तवज्जो देंगे। तो चलेंगे, अगला गीत जो है दो प्यार भरी आवाज़ें हैं कमर सानू और साधना सरगम की, आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस गीत को इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर सानू और साधना सरगम को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। खान भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपके नाम, आपके दोस्तों के नाम, और इस वक्त बाबर शाह शॉप पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम करेंगे और दीकर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं छोटी सी कमर्शियल, उसके बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: 24 hours a day. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जो प्ले करने वाला हूँ गीत यकीनन आप दोस्त इसको भी पसंद करेंगे, तो चलते हैं एंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: कुमार सानू की मधभरी आवाज में आपने दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्त जो हैं इस गीत को एंजॉय भी किया होगा आप सभी ने। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा, कोई कमर्शियल नहीं होगी, क्योंकि वक्त जो हो चुका है वो हो चुका है जोहर की अजान का। तो चलेंगे दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जनाब। और प्रोग्राम में कमर्शियल भी आ रही है, तो कमर्शियल के बाद जनाब सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है, तो पहले चलेंगे टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44 से, यानी कि 1:44, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। जनाब हीरा खान साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। और जनाब आप दोस्तों के लिए अब सदा बहार पुराना गीत होगा कमर्शियल के बाद, तो हीरा खान साहब आपके नाम, तारिक लुत्फी साहब के नाम, खान भाई आपके नाम, नदीम मंसूर साहब, आबिद भाई और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल वाले, और जनाब ग़ुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste and something new.
7: 24 hours a day. Sunrise Radio.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold. Taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी सैड गाना जनाब हो गया। चलो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो जनाब अब रफ़ी साहब को आपने सुना और इसी गीत के साथ जो आखिरी जो अब अगला गीत होगा वो इस प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा। उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों आज का प्रोग्राम आप साथियों को पसंद आया होगा। उन दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो दोस्त शुरू से हमें सुनते रहे, हमारा साथ निभाते रहे। उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए शामिल हुए और अपनी हाज़िरी लगवाते रहे कि हम भी सुन रहे हैं और प्रोग्राम के बारे में राय भी देते रहे। उन दोस्तों का भी शुक्रिया। तो दोस्तों अब जो वक्त है हमारे प्रोग्राम का अख्ताम पसीर हुआ जाता है। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को अख्ताम करूंगा कि आप सभी ने आज का प्रोग्राम जो है इन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर आमिर सलाद को अब इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें, आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहत याब, तंदरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे, आमीन। मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ रहूँगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है आपके साथ साथ, हमें गुजारना है आपके साथ साथ, चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Have you tried Caratino Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caratino Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
3: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफ़र और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद, वेलकम और जी आई एन कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत और हसीन बन जाता है। आपका शुक्रिया।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दस ब्रेडफोर्ड 7230300।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste and something new.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014. Sophie Jewelers.

0: है कोई मुझे जंगली कहे।
1: आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में, और 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं काल्डर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप आपके जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

मुझे यकीन है कि जो गीत आपने सुना ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

हाय, बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मज़ीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से ज़िंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़ुबान होती है, और वो ज़ुबान होती है कि किसी भी ज़ुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की ज़ुबान होती है। मोहब्बत की ज़ुबान वही होती है जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी ज़ुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूज़िक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।